दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म बहार। जी हाँ, फिल्म बहार में से निकाले हैं ये शानदार गीत, बहुत पुराने गीत जहाँ तक मैं आया, मेरे ख्याल है कितने लोग यही गाना सुन सुन कर आज बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, आजा हो गए, आजी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, यहाँ की पर राजा पर नानी भी हो गए होंगे। और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। उम्मीद है इस गीत से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गए होंगे। क्या ख्याल है? फिल्म फिल्म फिल्म, बिन फेरे हम तेरे, नेगती नेगन सैफ तक का ये गीत उषा खन्ना के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गीत हो सकता है बहुत दिनों बाद आज आप सुनोगे, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद हमारे सहयोगियों ने चलाए होंगे, तो मेरी बदनसीबी है, लेकिन गीत तो मैं चलाऊँगा अवश्य। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बिन फेरे हम तेरे।

दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के रहना है रफी साहब। और उषा खन्ना के साथ पर, उषा खन्ना जी के साथ खुद नेकते नेकन सैफ तक का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो ये है

0: इन प्यार की राहों में ये शानदार गीत चलाया कार्यक्रम में हमने पेश की। हमने शायद तेरे गीत रखे हैं, इसे हम चुन नहीं किए हैं, सुने भी नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका टाइटल, अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं कि लता जी क्या कह रही है। फिल्म है गर्म खून, अरे वाह क्या बात है, फिल्म है गर्म खून और लता कह रही है मैं अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं।
1: अच्छी

आ जा रे आ जा सनम, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, शंकर जय किशन के साज था। जी हाँ, निकली ताकत का ये फिल्म है, फिल्म गरम खून, जैसे गरम खून है वैसा फिल्म की गीत भी है, और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म पूर्णिमा में से।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, फिल्म मिलाप में से निकाल रहे हैं, ये भी निकितिन ट्विन से ही तक का है, ब्रिजभूषण के साज पर। और चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

0: कई सदियों से कई जनों से द हार्ट ऑफ मिलियंस मैथी मुकेश आपको सुनाए ये शानदार गीत आओ चलाओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ देखते हैं तो ब्रिजभूषण के साज पर, जी हाँ ब्रिजभूषण के साज पर निकली तुई से ही तक का ये गीत हम आपको सुनाए फिल्म मिलाप में से निकाल कर।
1: तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करता आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान फ्रॉम द मूवी ललकार निहंटिंग ट्वीन सेफ द कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से यही कहते आ रहे हैं आप सभी से यारो कि हैव टू नास्त आउट एट लीफ हैं कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे कुछ पुराने नगमे खास करके अगर आप ओथ इस गोल्ड को पसंद करते हैं तो मैं लाया हूँ कुछ नगमे पुराने जमाने के महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव वर्मा जी के कुछ बनाए हुए धुने और उसके बाद आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें भी है शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम के सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब जी

Masterpiece of Composing by Maestro J.D. Varmaji. और Queen of Melody लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान एड फिल्म तुम्हारे लिए 1978 रिकॉर्ड अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और इस बार लाते हैं फ्रॉम द सेम मूवी तुम्हारे लिए छोटी बहन लता जी का नाइटिंगेल उषा मंगेशकर नक्शिलालपुरी के लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा मोरे तरस तरस गए नैना स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना, आपकी याद आती रही। एड फिल्म गमन 1980, कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा और आवाज थी छाया गंगुली जी का। लिखा है मखदूम मुहिदीन ने अति सुंदर बयान को, ब्यूटीफुल गजल। अगला बयान, आ प्यार की बाहों में एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुरेखा देवी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान फिल्म चांद ग्रहण ने। मिलकर सुनते हैं।

सितारे ने न जाने कान में क्या कह दिया, आसमाने सर झुकाया, जिस्म शर्माने लगे।

क्या बात है, क्या हंसी है। उस जमाने के गाने वाली द ग्रेट वॉइस के मालकिन अपार्ट स्टेम फैयास जी, आई डू फिल्म गंबीश कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा, आसमां पर एक सितारा, क्या बात है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, जोर तोर से गीत और गजल आप सुन रहे हैं संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम में। महान संगीतकार पुराने जमाने का यार, 50s 70s मास्टरो जयदेव वर्मा जी के कंपोज किए हुए नगमे आप सुन रहे हैं। अगला बयान, किया पिया पे किया जादू पर मैंने क्या किया, क्या बात है। What send it text so mooi geschreven zeg. Oude, je ati zonder bejaan uit de film Trikon ka Chautha Kaun 1986 mein release kiya gaya tha. Usi film mein se ye ati zonder bejaan aap sunenge. Us zamane ke ek aur mahaan gaane wali, kya baat hai. रात की किया पिया, वाओ व्हाट अ न्यूमन सेग। मिलके सुनते हैं अ ग्रेट कंपोजिंग बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी।

क्या बात है, किया पिया पे किया जादू, पर मैंने क्या किया। क्या बात है, डिफिकल्ट सॉन्ग गाने के लिए छाया गंगुली जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म त्रिको का चौथा कौन निगरान तख्त कंपोज बाय मास्टरो जयदेव, और लायरिक्स था इस गाने का लिखने वाली माया गोविंद जी ने। तो आज का इस हसीन स्पेशल माएस्ट्रो जयदेव वर्मा का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे यारो, और धीरे धीरे भी जितने गाने मैंने सेलेक्ट कर चुका था मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में वो सभी मैंने सुना चुकाऊंगा आप सभी को, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने भी रिसर्च किया है, तो वो भी मैं सुनाऊंगा आप सभी को आने वाले हफ्ते में। तो मिल के सुनते हैं रात के पिछले पहरों में आशा भोसले जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान एड फिल्म अंजलि 1957 कंपोज बाय मास्टरो जयदेव वर्मा जी, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

0: Ja, wat een beautiful song from the movie, old movie, Angeli 1957. Maestro, jij deel je kisage, our Asha Bhosle ji ke beautiful avance, mieti chundra bian, absoluut aan is suna. To amare priye sathiyo, ye tak tha aaj ka ye haseen special maestro, jay deo varma ji ka jo samapt hone ko aaya. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है, एकदम आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत यारो।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत दम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो सो लोबी लोबी नांगा ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, इश्तिहारे हो, जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं, किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलटेडेंस कंटोर यूर फन मांडग तोत फ्रेडग फन नीग यूर स्मार्गंस तोत फेव यूर स्मिडग्स दफ्तर कतार का नंबर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 970-365-2247 पर आप तार करें। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ यारो। बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक, जो रिलीज किया गया था 1964। ब्यूटी क्वीन विजयंती माला जी के साथ राज कपूर जी ने, यानी हाँ राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं, तो मिलके काम किए हैं इस फिल्म में। संगीतकार है शंकर जय किशन। तो दो नगमे रह गया था सुनाने का इस फिल्म से, तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मज़ेदार सॉन्ग जो लोगों को उस जमाने में काफ़ी पसंद लगते थे, कुछ को नहीं कुछ को ज़्यादा। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान। मिल के सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम।
1: मैं

I Love You. From the movie Sangam 1964, Vivian Lobo ke Beautiful Awaaz mein composed by Shankar Jai Kishan. To hamare priye priye shrotaon sabhi nagme From the movie Sangam aap sabhi ko suna chuka hoon. Ab lekar chalte hain aap sabhi ko ek film jo also release kiya gaya tha 1964 mein, film Zindagi. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजयंती माला जी के साथ और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है. संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन. तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे. अगला बयान शुरू का बादशाह रैकिंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को पहले मिली थी सपनों में. हसरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर.

Beautiful song, wonderful song, Shrutawani, suna ai de film Zindagi. Ravi Sahab ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एड फिल्म जिंदगी हम प्यार का सौदा करते हैं.

दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी। एड फिल्म जिंदगी नीति फिल्म सस्ते सुर का बादशाह रफी साहब जी। तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यारो कि जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे। मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है, जिनको जब दिल चाहे जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं। माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं, माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं, लेकिन जब हम जैसा हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग है घुंघरुआ मोरा छम छम बाजे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। प्यार की दुल्हन सदा सुहागन, एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए। मिलके सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन।

रहा हूं प्रोग्राम में, पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी, और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर। छूने ना दूंगी मैं, दोनों बहने हैं क्या बात है, लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं शंकर जय किशन की साज पर। जिंदगी द मूवीज़

0: Bine, Devi. शादी मुबारक. तुम हमेशा खुश रहो.
1: गोपाल बाबू, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है. मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए.
0: मदद? मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें, और उसकी वजह मत पूछिए.
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना.

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने न दूंगी मैं। आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये थी सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की। एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

0: आए हैं एड फिल्म जिंदगी लता मंगेशकर विद कोरस के साथ मैस्त्रो महान संगीतकार जोरी डगड़ेत शंकर जयकिशन के सांच पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं सभी नगमे आप सुन चुके हैं फिल्म जिंदगी का, अब आप सुनेंगे कुछ विज्ञापन और कमर्शियल्स। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो हम लोग भी और जोर तोर से कोशिश करते हैं कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स सेलेक्ट कर करके आप सभी को सुनाने के लिए। तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ, स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है। आफ्टर द ब्रेक
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
0: तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूं, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार निगदिंग ट्वीन से कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो कि

आ जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हब त्यू नाश्ताल दे लीफ है, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम, और कुछ नगमे लेकर आया हूँ पुराने जमाने के महान संगीतकार श्री जय देव जी का। उसके बाद आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है, बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी वो जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। रवि साहब

लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन कार्यक्रम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, दिग्गज भूपेंद्र जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान, दिल धड़कने की साथ दे रही है शोभा जोशी जी, म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव वर्मा का बनाया हुआ ये अति सुंदर मीठा धुन आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Beautiful song, wonderful song from the movie Trico Cachautaco 1983. Maestro J. Deo Verma ka compus kia hoe ti sundar bian Bhupinder au Shobha Joshi ke awaz mein. Agla bian ko sunane wala hai aap sabhi ko. जरा दिल थाम के बैठिए सुरों का बादशाह रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी अंजलि 1957. मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी का बनाया हुआ है अति सुंदर बयान. लिखा है न्याय शर्मा जी ने. बुद्धम शरणम गर्षमी. रवि साहब

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग रवि साहब जी के मधुर आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा आई डी फिल्म अंजलि 1957। रूप की धूप तो ढल के रहेगी, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनन के जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी आई डी फिल्म जियो और जीने दो 1969 हसरत जयपुरी के अल्फाजे।
1: शाबाश शाबाश मेरे बच्चे।

बड़े मजेदार सॉन्ग आप श्रोताओं के शो में पेश किया गया, रूप की धूप तो ढल के रहेगी, एड फिल्म जियो और जीने दो, रवि साहब जी के बड़े ही मजेदार आवाज में, हसरत जयपुरी के अल्फाजे और श्री जयदेव वर्मा जी का संगीत। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है संगीत का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी के बनाए हुए कुछ धुने आप सुन रहे हैं। अगला बयान, अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है, एक देशभक्ति का गाना सुनाने वाले हैं आप सभी को एक बार फिर। शुरू का बादशाह रवि साहब जी, एड फिल्म मुझे जी।

अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। पद्मश्री मोहम्मद रवि साहब जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कॉम्पोज बाय मैस्त्रो जयदेव वर्मा जी। अगला बयान एक बार फिर रवि साहब जी के मधुर आवाज में मजेदार मोहब्बत से भरी हुई बयान है, फ्रॉम द मूवी एक थी रीता नेगेटिंग 71, composed and arranged by Maestro Jaydev Verma.

हो, बरसती घटा हो, न जाने तुम क्या हो। ऐ मेरी हमदम सुलगती हवा हो, बरसती घटा हो, न जाने तुम क्या हो। ऐ मेरी हमदम निगाहों को चुरा के, किसी को तड़पा के, चलो न बल।

0: presenteert...
1: Bayana, Absolutanki, Shivami, Pishkia, Gea, Hans Kirki, uit de film... Dikhajaik, Beautiful Song uit de film Sapna, Maestro J. Deo, Varma ke Saashpar. अगला बयान एक अति सुंदर बयान है कंपोज बाय मास्टर जयदेव वर्मा और एक बार फिर रफी साहब जी के मधुर आवाज में इस तरह जाओ नहीं

तरह जाओ नहीं, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में, संगीतकार जयदेव वर्मा के साज पर। अगला बयान एक बहुत ही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान है। आइडियो फिल्म भावना निकिन त्वेयन सेफ तक महान फनकार और कलाकार, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, एक बार फिर पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। नक्श लियालपुरी के अल्फाजे, तो जरा अल्फाजे, जरा इन लफ्जों पे, अल्फाजे पे जरा ध्यान देना, क्या बात है। जबरदस्त गायक जो लिखा हुआ ये बयान आप सभी के खिदमत में जितनी खूबी से पेश किया और जितने तारीफ किए जाए कम है।

0: क्या बयान था ये दुनिया, वो दुनिया है जहां इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। ऐड फिल्म भावना नेगटिंग तो इंसीमत सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में कंपोज बाय मैस्ट्रो जयदेव वर्मा, जिनका स्पेशल आप तकरीबन एक घंटे तक सुना। लेखक था नक्श लियालपुरी। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का ये हसीन स्पेशल मैस्ट्रो जयदेव वर्मा जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: लाइव फ्रॉम आवर हाईटेक स्टूडियो इन देन हार्ट।

बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है, और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो

0: आओ बच्चों, मैं तुम्हें
1: आशा भोसले जी के आवास में लाचे दाख नित इन हत वाटर फॉलन रेखन geen probleem. Dat is dan gewoon extra glans op je dag.

सुंदर सा गीत फरमाए गया आपके लिए कि प्यार का दर्द है। इस बारे ऐसी हसीन चांदनी, गीत का बोल है

नाइटिंगेल, लता जी के आवाज में न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए पेश किया गया आपका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, मेरे प्यारे सुनने वालों। और क्या कहे आपसे, ये कहना चाहिए

कलंक कब मुझे छोड़ेगा, किशोर दाजी के आवाज में मैंने रिफरमेंस ना हेल लांग तैत होर वतेत लीत एंड दैट इज सो बी सुंदर ओम तो होर

गीत कहते हैं कि बाय बाय मिस गुड नाइट किशोर दास जी की आवाज में व्हाट अ वॉइस सेस टिप्स फॉर सुंदर हार हाँ अपना बाल कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं तो पहला है वाश्यहार नित्तफाक ने वाश्यहार नित्तफाक है कि हो हर्ट एंड हार वत रोस्टिसन वस बर्तन एंड ओली यहार फोरेट वसन

मातम होता है, कोई बिछड़ जाता है या रिश्ता टूटता है तो घर घर तो रहते हैं पर वो रौनक नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ऐसे ऐसा गीत याद दिलाता है, दिल तड़पाता है। Oprecht zijn is de mooiste manier om anderen te respecteren. Moge uw dag geleid worden door rechtvaardigheid.

तखलित जा मुझे अब याद ना आ, किशोर दा जी की आवाज में हाय मेरे दोस्तों स्लेक्ट वेर बस्तात नीत द परफेक्ट दाग ओम आलस ग्लात ते स्ट्रेकन रुस्तिग बिगिनन देन कोम द रेस्ट फन सेल्फ स्ट्रेक द स्ट्रेस रुइट मेने लिफे मेंसे नीत ते क्लेरन या En wij wensen jullie allemaal, waaronder ik ook, een prachtige dag vol vrolijkheid, mooie momenten en positieve energie. Maak er iets moois van.

जहाँ से हम श्रवण कर रहे हैं भजन माला कार्यक्रम, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना जीवन, अपना दिन जो है सफल बनाने के लिए। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

ज़िंदगी जो मिले है इसे खुल कर जियो, क्योंकि ना वक्त दोबारा आता है और ना ये जीवन दोबारा मिलता है।

कितने सुंदर ढंग से हमारे हरि ओम शरण जी फरमा दी कि आपने सुने क्योंकि वो मेरे प्राणों में पागल सा प्यार बसा कर बस ना जाए वहीं ठहर जाए। उसके बाद आपके लिए एक सुंदर सा गीत यहाँ पर लगातार आपके लिए चलाया जाता है, प्रोग्राम आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है। कि छोटा सा आदमी हूँ, कोई ख्वाब नहीं हूँ,

0: कुमार
1: जी। अरे नहीं यार, ये तो रजनीकांत है।
2: अरे भाई, ये तो अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन।
3: मस्ती की एक लहर हूँ सर।

0: पंकज उदास जी के आवाज़ में सुंदर सा गज़ल पेश किया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से द एनख एख्त यू फाफरित हिंदुस्तानी रेडियो इन टाउन। और यहाँ से ये बात कहना चाहती हूँ और वो बात ये है यूहफ नित खलीफ तसैन बे आलम मेंसन या यू होर तत्वेल खुद Ik hoef niet geliefd te zijn bij alle mensen. Wat voor mij belangrijk is, en voor u ook, is geliefd te zijn bij de juiste mensen. Ja, u klopt, u knikt, dat hebt u gelijk. Belangrijkste is geliefd te zijn bij de juiste mensen.
1: Aapke saamne pesh karna chahunga. उर्दू साहित्य में उर्दू अदब में नज़म एक ऐसी कविता है कि जिसमें एक पूरी कहानी कही जाती है। इस नज़म का टाइटल, इसका उनवान है 21वीं सदी, और नज़म के शायर हैं जनाब ज़फ़र गोरखपुरी। ज़फ़र साहब ने बयान किया है, पहले बंद में हमारे बुज़ुर्ग यानी हमारे दादा परदादा के वक्त की बातें हैं, दूसरे बंद में हमारे अब्बा हमारे पिता के वक्त की बातें हैं, तीसरे बंद में इस मौजूदा दौर का बयान है। ये मुंबई शहर की ज़िंदगी, हर कोई भाग रहा है, उसके बारे में शायर ने कहा। और आखिरी जो बंद है उसमें बयान है हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली पीढ़ी जिस रास्ते से गुजरेगी, किस रास्ते से गुजरेगी, उसके बारे में शायर ने कुछ बातें की, अपने ख्याल पेश किए। मुलाहिज़ा फरमाएं।

अच्छे भले वाले लोग बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद हमारे पिता का वक्त आया, जबकि एजुकेशन और एक लफ्ज़ है रवायत, रवायत के माने है ट्रेडिशंस, कि हमारी ट्रेडिशंस में कितने सारे बदलाव आए। काबिल गौर ये बंद है, बहुत खूब लिखा है शायर ने।

अगर हम ये गज़ल, ये नात जो हमने सुने हैं, गौर से जो सुने होंगे तो ज़रूर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आँख जो है नम हो जाएंगे, सोचेंगे कि कैसा था और आज कैसे हैं। ये यार नई खंतीन में या नई खंतीन यार में खुरी भैल है, जैसे नई खंतीन ताख्तख नई खंतीन फैफ तख जो उस उमीर के है, वो सब फर्श के जान जाएगा कितना था, कैसा था और कैसा हो गया है। ये सब सोचने वाला बात हो जाता है, आँख नम हो जाता है। ये पंकज उदास जी सुंदर रूप से सुनाई है कि दुख सुख था एक सबका। हाँ आज भी है, पर सभी का अपनी अपनी अनुभव है। मिले जुले गीत यहाँ से आपके लिए ये प्रोग्राम में चलाया जाता है और साथ ही साथ भी बहुत प्यार के साथ आपको शुभकामनाएं भी पेश किया जाता है। Het haastige werk is zelden het beste werk. Het haastige werk is zelden het beste werk. Wie de tijd neemt, maakt minder fouten en houdt meer tijd en meer rust over. Grote dingen hebben lagen nodig. Elke dag één steentje is genoeg.

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हम घड़ी के वक्त इस बार फिर देख रहे हैं तो घर यही इशारा कर रहे हैं कि 3 मिनट बाकी है 9 बजने में। इसका मतलब यहाँ से मुझे विज्ञापन लगाना है और उसके बाद इंतज़ार करना है। हाँ, किसका इंतज़ार? जी हाँ, हर बुधवार की तरह हमारे पूज्य पंडित जी श्री राजकुमार महात्म जी उपस्थित रहेगा अपने ही मुखारबिंद से हम सभी के कानों तक सुंदर सा कथा लाने के लिए, श्रवण कराने के लिए। तो यहाँ से हम तैयार हो जाए विज्ञापन श्रवण करने के लिए।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.

0: इंतज़ार जिनका था वो ही आ गया है। तो यहाँ से बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको नमस्कार है और आपको हार्दिक से स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद जी।
0: पंडित जी आप आकाश में
1: हो। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च नमः स्वाय च सुत्राय च मोक्षुक्षरूप विश्वरु को नमस्कार। संसारी सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत रूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी कृष्ण जहां तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जाकर था मेरा प्रणाम नमस्कार। या राम राम सीताराम पहुंचे खास करके रेडियो फान को जो मालिक है मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धर्म प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे जहाँ प्रसन्नता जी ने रेडियो फोन के माध्यम से कितने अच्छे ढंग से हमें आपको सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनालो कुछ रामायण के माध्यम से कुछ आपसे बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पे ध्यान करना आकाशवाणी कृष्ण जीव जो है ना जीव क्या है जीव आत्रिय है। इसके छोटे रूप में कहूं इसके समझाना चाहिए जीव आत्रिय बने तो उसके बुद्धि अनसुईया बनती है। अनसुईया महान पतिवर्ता थी। गाथा कई बार सब सुनी चुके लेकिन इसके निचोड़ हमें निकालना है गाथा में से कथा में से। अनसुईया महान पतिवर्ता थी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर की यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर को उन्होंने बालक बना लिया था। ये सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देव ऋषि नारद जी कैलाश पर पधरे। कहां नारद जी 88,000 ऋषियों में सबसे महान ऋषि है। तो एक समय देव ऋषि नारद जी कैलाश पर पधारे। श्री जी उस समय समाधि में बैठे थे। पार्वती ने नारद जी को सत्कार किया उनका पूजा किया और पीछे प्रसाद दिया। तब नारद जी ने कहा आज तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला। ये लड्डू बहुत सरस है परंतु लड्डू तो अनसुईया के घर का जैसा श्रेष्ठ होता है वैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मिला ही नहीं। सोचो आकाशवाणी के सुनने वाले आप कुछ वस्तु बनाकर कोई दे लो और बोले ये वस्तु इससे अच्छा वो बनाए तो आपकी बात ना ठीक लगेगा ना। तो जा करके पार्वती जी ने पूछा ये अनसुईया भला कौन है। नारद जी ने कहा तुम पतिवर्ता हो परंतु अनसुईया महान पतिवर्ता है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ कि मुझसे अनसुईया अधिक है। शिव जी समाधि में यानी शिव जी समाधि में से जगे तो पार्वती जी ने वंदना किया। घर का आदमी बहुत वंदना करें बहुत सेवा करें तो जानना कि कुछ दाल में काला है। कहने चाहते ना जी कह के वहां चले गए तो पार्वती माने शंकर बाबा के पांव बहुत सेवा करने लगा। शंकर बाबा के पता मिल गया कि आज कुछ दाल में काला है कुछ मेरे से मांगेंगे। तो पार्वती जी ने कहा गया है पार्वती जी ने नारद जी को सब कथा सुनाई के बाद आगे कहा, किसी भी प्रकार के अनसुईया के पतिव्रता का भंग हो। अब जाकर नारद जी वहां चले गए तो गौरा पार्वती माँ कहे भोलेनाथ शंकर बाबा से कि वो पतिव्रता स्त्री जो है अनसुईया उसके भंग कर दो। ऐसे करो, शिव जी ने कहा देवी इसके कल्याण नहीं होगा। भोलेनाथ शंकर बाबा समझाते हैं पार्वती से, देखो ये काम ठीक नहीं है। लेकिन गौरा पार्वती माँ शंकर बाबा पीछे पड़ गए तो शंकर बाबा ने विचार किया, चलो इनके साथ में रहना है, तीन के बाद में मेरे को मानना है। परंतु पार्वती जी ने कहा, हट किया। तब शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो मैं प्रत्यन करूंगा। एक सोमावितर सभ्यास दुना इधर नारद जी कैलाश से निकलकर बैकुंठ को गया और लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी ने पूछा, आज क्या बात है जिससे इतने अधिक आनंद हो रहे हो? कौन लक्ष्मी पूछते हैं, किससे? नारद जी से। तो नारद जी ने ठसक से कहा, बैकुंठ को महिमा पहले थी परंतु इस समय तो अनसुईया की आश्रम छोड़कर दूसरा स्थान पर नहीं है, नहीं जाने की इच्छा होती है, तो मैं वहीं से आया हूँ, इसलिए बहुत आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ, अनसुईया कौन है? ऐसा पूछा। नारद जी ने कहा, अरे अनसुईया को कौन नहीं पहचानता, वे तो महान पतिव्रता है, ना भूते ना भविष्य। लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, नारद जी वहां से प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी मैया ने विष्णु से कहा, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे अनसुईया के पतिव्रता का भंग हो। नारद जी वहां से ब्रह्मलोक गए और वहां पर भी जाकर उनके बात सुना करके और बात सुनाया किन्हें,

मिल करके चित्रकूट के यानी ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ शंकर बाबा चित्रकूट में अनसुईया के आसन में गए। वहां पर कौन साधु को रूप धारण करके भिक्षा देव कहकर खड़े रहे। तो अनसुईया जब भिक्षा देने लगी तो उस समय देव ने कहा, तुम नंगे होकर भिक्षा दिया वस्त्रहीन होकर के मेरे के भिक्षा दो तो ही हम ले गए। अनसुईया विचार में पड़ी कि नंगे होकर भिक्षा दो तो मेरे पतिव्रता ये भंग होगा, भिक्षा ना दो तो द्वार पर आया अतिथि वापस जाते हैं, दोनों प्रकार से पाप लगता है। प्रभु नंगे होकर भिक्षा देने को मांग करते हैं, इसका अर्थ है कि विष्णु मुझको वासना रहित होकर भिक्षा दे। ईश्वर को सब वस्तु वासना रहित होकर निष्काम होकर अर्पण करनी होती है। इसके अर्थात आकाशवाणी के सुन ले, हम वहां भगवान को जो अर्पण करें तो भगवान से हम ना बोले, प्रभु हम आपके सापन का लड्डू चढ़ाए हमारा बेटा अच्छा कर दो ना, हमारा कार्य है, हमारा कर्म बनते भगवान के प्रार्थना करने के लिए। अब पिता पर भगवान जानते हैं क्या हमारे भक्त के लिए क्या जरूरी है। हम आगे बढ़ते आकाशवाणी के सुनने वालों, तो तीनों देव आते ही नहीं। अनसुईया माँ ने ध्यान किया और तीनों देवों को ऊपर जल छिड़का, तीनों बालक बन गए। पतिव्रता में ऐसी शक्ति है, बहुत समय बीतने पर भी देवता सब वापस नहीं लौटे। तो पार्वती लक्ष्मी जी अंबरभानी यानी तीनों अपने पति दो को ढूंढने निकली। तीनों नारद जी से मिले, देवी कह नारद जी से तीनों मिले। नारद जी से पूछा, क्या तुम को कुछ खबर है कि हमारे पति देव कहाँ है? नारद जी ने कहा, पहले ये बताओ कि कौन बड़ा है, तुम कि अनसुईया? देवी ने यानी तीनों स्वीकार किया कि अनसुईया बड़ी है। पीछे नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति देव बालक बने हुए हैं और अनसुईया के घर में है। देवी यानी तीनों जो है देवी घबराने लगे कि वहां जाऊंगा तो कदाचित अनसुईया शाप देगा तो क्या होगा। अब तीनों डरने लगा। नारद जी ने कहा, तुम भले ही मत्सर करो परंतु अनसुईया जी मत्सर करने वाले नहीं है। अनसुईया जी तुम्हारे प्रति सदा भाव रखेगा। देवी चित्रकूट में आते ऋषि के आश्रम में गए। पीछे तो अनसुईया जी ने देव को प्रतिज्ञा कराई कि किसी पतिव्रता को कभी त्रास देना नहीं चाहिए। कौन वहां पर अनसुईया माँ ने तीनों से कहा कि देखो, किसी जो पतिव्रता स्त्री है उनको कभी उलझन में नहीं डालना। इसके अर्थात ये है, हम वहां भी देखते कितने समाज में कार्य बहुत अच्छा चला लेकिन कितने लोग तैयार होते हैं उनमें जाकर के काम रोकने के लिए। कहीं इसके बाद तीनों बालकों को ऊपर जल छिड़का और तीनों महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अनसुईया जी से कहा, तुम्हारी आंगन में हम बालक बन करके खेले हैं, ऐसा सुख तुमको कभी नहीं मिलेगा। रूप से देखते हैं तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हुए और आत्री अनसुईया के यहाँ गुरु जाकर के ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ शंकर बाबा जो है। तो सोचो हमारे धर्म में क्या दिखाते कि माँ के कितने शक्ति है कि एक माँ ने पिता पर भगवान को अपने शक्ति से बालक बना लेते हैं और वही नन्ना सा बालक हो जाते हैं। अनसुईया माँ तीनों बालक को खिलाए। तो आकाशवाणी के सुनने वाले युवानी द्वारा अपना परिचय विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि।

तो प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हमने कितने अच्छे से श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारविंद से सुंदर सा कथा, जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आकर यहाँ पर हमारा सेवा की है। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरा टीम की तरफ से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को हार्दिक से धन्यवाद किया जाता है और इंतजार रहेगा अगले बुधवार तक। शुभ दिन आप सभी को। आख्तिनो फनेख हो चला है। और साथ यहाँ से एक गीत है, एक भजन का भजन है, बहुत सुंदर भजन है, यहाँ से हम सुनेंगे।

है ना खूबसूरत भजन, जो हर समय पे सुन सकते हैं, इसे वक्त के पाबंदी नहीं है।

हरिओम शरण जी की आवाज़ में यहाँ सुंदर सा भजन सुने हम काफ़ी दिनों के बाद कि मुकुंद माधव गोविंद बोल। वेस कोपख इन या दुलन वेस कोपख इन या दुलन नित त ब्रेकन मार वेस सख्त फॉर मेंसन उम ये हीन। Het is ook zo, je bent niet te breken, wij zijn niet te breken. Je kunt iemand pijn doen, je kunt die persoon laten vallen, maar onderschat nooit iemand. Onderschat nooit hoe vaak die persoon weer opstaat en doorgaat. En dat is het leven, opstaan, doorgaan. En dan bereikt u uw doelen.

हाँ, देर से क्यों खड़ी हो और करीब आ जाओ ना। हाँ, रेडियो के वॉल्यूम कुन अब थोड़ा रैक्स और ड्राई कर देना, ताकि अगर आप घर में जिस कोने में भी हो, आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, और आपके कानों जो तक पहुँचे तो आपके शरीर जो है वो मंडोले टंडोले हो चलेगा। दार वार ये अप फोकस दात ख्रोइत, या ये कैंट ये वार्ड, या ये कैंट ये वार्ड, वेट व्हाट ये वार्ड बेंड एंड वेट व्हाट ये विल। Liever alleen dan omringd door fakeness.

जब आई रिमिक्स किया गया गीत आपके लिए। कहते हैं ना अवल इधर इन न्यू याश। ओल्ड बॉलीवुड लव सॉन्ग्स रिमिक्स।

अति सुंदर फरमा दी है। और ये ज़रूर कहूँगा, स्पैत इस खीन पेख, स्पैत इस खीन पेख, स्पैत इस खीन पेख, het is het gevolg van keuzes die je beter wist. En vooral, mijn lieve mensen, lieve luisteraar, vier jezelf, want niemand anders weet hoe het is om jou te zijn.

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, स्पेशल स्पेशल ये कलेक्शन आपके लिए चलाया जाता है, और वो भी आप ही का फेवरेट फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। तीन ओवर हाफ एल्फ हो चला है। बुधवार के सुबह की कार्यक्रम इस वक्त आपके लिए लाइव पेश हो रहा है। अन ऑटोमोबिलिस रेट इन ऑफ अगेंट एन राक एवं लाटर सेल्फ गवॉन्ट बाय ऑनगेलुक। और ये समाचार है डेल्फ का। पोली अन ऑटोमोबिलिस इस दिनसदा आफंत aangehouden nadat hij op een motoragent was ingereden. De agent kon de auto ternauwernood ontwijken en bleef ongedeerd. Het ging net goed, zegt de politiewoordvoerder.

अमित कुमार के ये गाया हुआ गीत है, इस बार है एक रास्ता है जिंदगी रेत्रो रिमिक्स।

कुछ चुन हुए गीत आपके लिए पेश किया गया है। या ब्लैव लेकर अफगस्टेम्ट अप यू एनिग फावरीट हिंदुस्तानी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। यहाँ से मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। मैंने लिव मैंस हत पास मान खनुख मत यू हीर इन अवसेंडिंग तसेंग। आज के लिए

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। एक बार फिर कहते हैं तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अलाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज भी आपको हम देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम तुरंत शुरू करते हैं दोस्तों, तुरंत शुरू करते हैं। और हम जानते हैं सूरीनाम के, और हमारा नानी नाना सूरीनाम में आप लोग जानो भैया बहुत जबर अरेनिंग हुए है। आदमी दारू पी को तो चलावे है, स्त्रों पाल काट देवे, बोले बिच्चे रस्ता में स्त्रों पलवा आई गे रहा, बक्यू नसार रहा तो के देखात रहा ईबीएस के पलवा डमुआ पे आई गे, तो कांति में रहे। और ऐसे ऐसे आदमी ओ तो बहुत जोर चलावे हुआ भैया, बिना रेप वैस के चलावे तो चिराग ना बरे है। तो ई करे तो भाई जबरदस्त हुआ पे फॉर केस कंट्रोल भइल है नानी, इंटेंसिव फॉर केस कंट्रोल भइल हैगा। जहां पे ना एगो दुगो भैया, बीते हुए हफ्ता में 7 गो फॉर केस ओवर ट्रेडिंग भइल है। 7 ओ तो पकड़ान भैया ओवर ट्रेडिंग भइल है फॉर केस रिहर्सल्स के बारे में। और ई चीज जो फॉर केस कंट्रोल भैले आफू बाका वेक पे भैले, कैनेडी वेक पे भैले, क्राका वेक पे भैले, इंदिरा गांधी वेक पे भैले, अन आउट प्लेसिंग फॉर एन अंतल ओवर ट्रेडिंग पर लोकासी ऑफ ना सोर्ट इज नी बकेन खमा सबन फॉर केस कंट्रोल करी से स्नेल हेट कंट्रोल करी सेगा। और बताए गए हैगा बदूलिंग इज ऑफ द फेलहेट ऑफ द वीकन बिन हेट वेर खबीत द फॉर क्रोटन एंड एन अंतल फॉर केस ओवर दिन तुरुक्त ड्रिंगन। तो हमार भैया लोन भी हमा कितना पकड़ान है भाई, लोन बड़ी ढेर पकड़ान है। तो हम जाए ल भैया, एक आदमी भैया बीते हुए हफ्ता में हना सुलेस में एक होटल आनाना, और ये आदमिया के होटल के आगे तरी हवा गई लेवे सोना के केती पहिर के नानी। 4:30 बजे सवेरे नख फन सोंदा एन मांदा फिर देर तक उर फोर हेड खबाओ और वो खड़ा रहा हुआ जाए के। और बोले हैगा उत्तरे में एगो आदमी ओके ओके होटलवा के अगवे पिस्टोल दिखाई के ओकर सोना के केती सब ओके रूफ करके चल गए भैया। एगो निघनन तुन तक यार खमान होटल इन ओम खीफ फन हाना सुलेस में रहा, और जो रहा पिस्तौल दिखाई के ओकर केती फेती लेके चल गए नानी। तो सूरीनाम में होटल ओक आगे चुके का बोले हैगा अने फैलख ना है फर दाख्त बदरेख द पिस्तौल लेके और ओकर सोना के केती इंदिरा गांधी बैग में लेके भग गए है नियोक्रोन के सिपाही एकर बारे में। अब ऑन द सुख करे है सूरीनाम में हम लोग जाए भैया फकांसी से, तो हम खड़ी खाली पहिर के जाए ला नानी। ऊपर से सस्ता वाला, सस्ता वाला भैया वन हुआ पे तू दुबलई के चीज पहन के चलियो तो बे बच जइयो। वन चोरवन परसी जाने कौन ब्रासिलिया के खौत है, कौन असली खौत है, कौन दुबलई है, तो उ सब जो असली सोना है तो हाथ गोड़ मसे यानी घटाई मसे सब नोच नाच के। और सूरीनाम में तरा चोरन लुटेरन है नानी कि केती फेती ले चल जी। एक मारे पन भौजी लोग बोली ले जइयो लावा आवा भूजे मौसी लोन फुआ लोन दीदिया लोन बप्पा मैया के फरियारी में जइयो, तो गुड़िया उड़िया पहिर के जइयो, ना जइयो सोना पहिर के चमकावे, नहीं खाली तू चोर बोलावे भैया। और जहां मीठा है हुआ चूटी जूटी, तो यहां पे बता जहां सोना है सना में हुआ चोर घुसी भैया। अब देखो एगो घर तुरान है, दुई मिला पकड़ान है भाई, दुई मिला पकड़ान है। और इस सब कौन ची ले गए भैया, घर के जितना अपराध रहा सब ले के। अरे सोच नानी,
gereedschap en huishoudelijke apparaten. Jitra raha side coffee apparaat ho, jitra raha. Maar ook zelf tegels. Aur je douchekraan bhi leke chal ge. Aur je kou na de kyo bhaiya. Te chocolade raha hua chocolade wo chora lege. Hey ga dui mila bhaiya. Dui hindustani ke moori hum hiya. Dekhi la dus na kali kapadi ye chorawe bhaiya. Hindustani bhi chorawe hai. Hier betaalde je zelf chocolade zijn buiten gemaakt bij de diefstallen. En je boma weg, boma folder ke baat hai, CD3 Wanika me. Twee mannen zijn aangehouden, pakraaien natuurlijk. Met de gesloten goederen zijn nog niet teruggevonden. Toen hier betaalde Santo Boma kisipai is heb gelegen hai. En pakraaien ke banker is hier betaalde hai. Weggenomen spullen zijn boormachine, schuurmachine. Delfs schoppen en een broskotter tot een stofzuiger en een ventilator, douchekraan, tegels en chocolade zijn verdwenen uit de woning. Toen je ze bebaat heen aan die Suriname deze keer, etena jabarsap hua, chori, chori chapati kare hai. Ja, bij Likal Vaya Suriname ke bole achter gesloten deuren schuilen verhalen die we vaak niet zien. Kawari ke bitter me, ghar ke bitter me, jon kawari man ukar paanche bari bari baat hewe he, jon hamno na jaan paila, het is rond 9 uur raad ke baat he, ondersteuning van Stichting Amor Fide terugkeren naar de basis, bole een lange dag zit erop, 9 bij je sabere geil he, op bole voedselpakket leke bhaiya, 50 gezinnen ke seban hua khaik baati se, dankzij anonaam, anonieme sponsor, die besloot zijn verjaardag op een andere manier te vieren. Worden er zijn vaker mensen die een groot op ons doen om projecten uit te voeren vanuit, vanwege uitlopende redenen. Te Suriname, achter de deuren, Admilon Bahudukka te Bahia, te Chaur Auro's. Bahut bahut chich hua dikhai deze en barek vol tranen bij een andere gezin te bhaiya jon etra janta ke madad kari se.

Leffe en top mee Jennifer Simon. 20 september keer Arugail Hega New York mee. Jaarlijkse bijeenkomst van de wereldrijders vindt van 21 tot 24 september. Bolega plaats onder het thema vertrouwen herstellen, de transitie beheren, een VND resultaten leveren voor iedereen. तो हम लोग के प्रेसिडेंट गए हैं न्यूयॉर्क नानी तो हम बोली बता दे ऐसे बतिया है ना घूमे गए हैं फेन के यानी कि वहां पे बेंज कॉम्स में गए है हमारे यारो हमारे दोस्तों हमारे मौसी हमारे मौसा और हमारे हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के और नीदरलैंड के अब देखो भैया एगो इंस्पेक्टर के साथ का भेल है नानी इंस्पेक्टर के साथ का भेल है इंस्पेक्टर के सभन ऑन सलाह दे से तो बोलिए का करी से जनिया जनिया ये इंस्पेक्टर वा का करी से भैया इंस्पेक्टर वा है गा करोस पुलिसी सूरीनाम के एक फलोपक बैत फिंची से बन करी से बोले ना अन क्लाख कि ये भैया रिक्रूटमेंट भी है तैने सा स्टाश प्रिव्यूद अन रेलाची सो है बन खाहात अपन स्टाश ना अन क्लाख फान अन रिक्रूट met wie hij tijdens haar stageperiode in relatie zou hebben gehad. De korpsleiding heeft de maatregelen genomen in de afwachting van verder onderzoek. De ik stagiair kiezing heeft, of bole hij gaan ik verhouding raan, of bole hij de jagra beëindigd, ook jagra bij de conflict tussen inspecteur en de recruit zijn ontstaan. De vrouw wendde zich vervolgens tot de autoriteiten en maakt melding van de situatie. तो एक बारे में नालिश करी से इंस्पेक्टर वाक ऊपर है तो उन स्लाख पाई से का फल ऊपर के में से पुलिस से अंदर सुकवा से प्रसीस जैसे बैदन हीफ अफगस्पेल एन ऑफ टेडेंस दस ताशा प्रयोड स्प्राके इस गवेश फान ओवरट्रेडिंग बिन द दीन्स Hangen dat onderzoek is inspecteur voorlopig thuis gezet. Obole Hega, ja wat we Hega medische heeft laten onderzoeken bij de dermatologische dienst. Uit dat onderzoek zou volgens haar zijn gebleken. Kibolo besmet raas zoals ze bij inspecteur zou op zijn beurt hebben gesteld. Dat juist de recruit verantwoordelijk is voor een mogelijke besmetting. Vooralsnog is niet vastgesteld. De is op seksuele tjitjkere bij jou Suriname met zo ouwe behoedeer heen. कंदों फंदों पहर के ना जाइए भैया तो यही सब बवाल हुई अब देखो भाई ऋषि तुसन फ्रिंदन तेजस ऑटो रेड मोंट आउट एंड मिस अनफॉल इज ऑटो रेड रेड करत रहा वही में ऑटो हुए में भैया का बोले हैगा अने इस सब के झगड़ा भइल है मोंट ऋषि भले जस किसी भइले इतना एस्केलेट हुई के उस सब के मेंस ऋषि की मार्टिन लुकर किंग्स ऑफ में इस सब छोड़ी के भोकवल कर ली से भैया को इन दार तक यार के अनमी एक मिला के छाती में भोग दे इसे अस्पताल में परल है और बोले है स्लाख तो फिर फरदाख्तर वार शाम में ट्वीप और अंदर पर्सोन एगो फुरतेक में राजू सब घरे जात रहा और तेज द रेट ऑन स्टॉन ऑन इन द गेट ना द डबल स्टूडियो एयर फॉर हर कोज फिर मार्टिन लुकर्स वेक्टर रेडन है स्लाख तो फॉर सो हैवन आंगेगिवन दैट एन अंदर रूट बेटर वास ऑन dat hij vermoedde dat er op weg een verkeerscontrole werd gehouden. De discussie liep vervolgens uit de hand. Het voertuig stopte ter hoogte van een warenhuis, waarna de woordenwisseling buiten werd voorgezet. Tijdens de confrontatie zouden verdachten met een tjuri en de bakkouwel huike bhaai te isep chota chota chich gaat in adminoon. Auro jaike, tjuri bakkouwel kallewe henani ye sep maathewe he. SVM के बांध हुए भैया वाटर लाइडिंग के पानी के बांचित हुए हैं वाटर लाइडिंग के बांचित हुए हमार नानी बोले दूश बर्ड का तख तख लीटर कोस्टन SVM वेस ऑफ फॉरबॉर्गन वाटर लेकन पानी कहीं लेक हुए भैया SVM तो तोके चाहे सब भरे के यह बतावे है जब तू जाइए नहाए तो बोले सेफन तक तो लाख तक तक लीटर तो के वाटर कॉस्ट हो जाएगा एगो है सौदन में मेरे फाइव परसोनन लोप थे फरब्रेक दार दोर स्नेल ऑप बोले एगो हल्फी के वाश मशीन एगो लेखाचे अंदर बेतोन

0: हनुमान
1: अकेले जो खड़ी हो, हमारा इंतजार हो रहा है, जरा इधर तो आओ।
0: कहाँ जाए जाने मन, मेरे पास तो आओ।
2: जलील, तुझे मालूम नहीं शरीफ लड़कियों से कैसे बात की जाती है?
3: और जो भी है बस यही एक फल है, हमारी जनता, हमारी दोस्तों। तो एक दो और समाचार हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। हम चलते हैं यूक्रेन को भैया। यूक्रेन का प्रेसिडेंट आप लोग जाने हैगा, और है सेलेंस्की। सेलेंस्की का बोले है, सेलेंस्की रूप यूरोपा के बोले है कि जो रूसी से मिलिया देर सेगा, बोले जो रूसलान के मिलिया देर सेगा, बोले ओके, बोले हैगा नीट फंड सांसिलाइस्ट हालन, बोले उस सब के सांसिलाइस्ट तो आप थल्ले रहिए, बोले दैट हीफ थे देश तक में डाक देश तक में खदान हर खात ऑन द रूसी से उस बीग से मिलिया देर उस मानोव एंड रूसी से मिलिया देर माइक माइकल फ्रीडमैन के फ्रैंकेक विल दी से ट्वी फ्रैंक विल द ट्वी फ्रॉम द लिस्ट हालन लेटलैंड विल दैट नीड ऑल द लिस्ट स्टार्ट नीड फॉर द मिडनाइट tot overeenstemming komen vervallen alle EU-sancties tegen de 3000 Rusland aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zolang deze oorlog voortduurt, moeten die namen op de sancties-lijst blijven staan, schrijft Zelensky. Ik er waren mee willen, he, janta. Zaten samen hem chelte, bhaiya, aap lun jano hai. बीते हुए दिनों में जबरदस्त ओवरफॉल भैला, चोरी भैला, और यहाँ पे बतावेगा शुक्रवार के फाइव फरदख्तन से वीर आनखाउदन ओवर ओवर अन लोपंड अंडरसुक रोव ओवरफॉल भैला फ्रीड सोप वेख पे और बतावेगा एक आइटखवेरक दौड़दर नारकोटिका टेररिस्म इंटेलिजेंस तेमा पांच मिला के सबन पकड़ी से हमारी जनता। साथ ही साथ बताए गए है तो लोग जाने जो क्वेकवा चोरी भैला खैर फेस के पुलिस ब्यूरो में बड़ा हाल एंड ट्रैक के बारे में भैला, हमारी जनता बड़ी हाल एंड ट्रैक भैला। और बताए गए है तीन चार गो उसको पकड़ा रहा, अब देखो दो गो और पकड़ाई गई है देर द पुलिस मानेश्वर आन खहोदन बोले हैगा जहाँ पे एलफ गो सिलेंडर भरल ला एगो ऑप्शला कंटेनर में पुलिस तरह खैर फ्लाइट पे वहां पे पुलिस अमतना सी बी इस वर्कशॉप ऑफ द अफदेली फन एरबीटी और बोले का ट्रेनो अब धरला बोले कि सिपाहिया पकड़ाएगे ट्वी पुलिस मानन वर्कशॉप इन द अफदेली फन फ्रॉड आनखाउडन एंड फर्सीग्री गस्टेल तो पकड़ाएगे हैगा भैया एहू। और बताएगे ये एगो अन सेप फ्लेशन में फ्लुइबार कोकेइन ऑन द स्कैप इन अंटवर्पन भैया साबुन एगो फ्लुइबार हैगा अंटवर्प में जाए के ओमा कोकेइन मिलल है 20 सितंबर के फ्लुइबार बातचीत हुए है हमारे जनता। साथ ही साथ यहाँ बताई गई हैगा हम चलते हैं कोंगो के बारे में। रिपब्लिक कोंगो में एम्बोला जो है बड़ा जो फर्स्ट प्राइज भैल है बोले है सीट आंस बोले अन प्लुक मन एन फ्रॉम इन विद बस्केरम द पकल लो फॉर द फ्लुक्टलिन कम 39 jarige vrouw die kort daarvoor met Ebola naar het ziekenhuis is gebracht. Dat bolle hega, ik ben niet bang om dit werk te doen, maar toch mensen, het is besmettelijk. Ebola ketra admi marge. Toen jano hega, Haiti ke president ke saban 2021 me saban maat haare raha. Juvenel Moisike. Ekar bare me bataye gaye hai Haiti me over gebrak na Amerika pakadan hai de verrachten onder wie voormalige Haitiaanse overheidsmedewerking ook een naam Joseph Badio oor de 17 Colombianen bolle die volgens Amerikaanse en Haitiaanse autoriteiten als huurlingen zouden hebben gefunctioneerd verschenen zo marke Miami के रेखबांक में से जाएगा। Amerikaanse militaire vliegtuigen Port-au-Prince mee. De verdachte staat in Haiti al jaren vast. In verband met de zaak, Haitiaanse autoriteiten hebben besloten hem in Amerika over te dragen, omdat de rechtgang in eigen land ernstig is vastgelopen. Bollega 2021 met 7 juli ke moordse van Janse Mareda, Madhareda, ex-president Moiseke, 53-jarige leeftijd in woning bij de Port-au-Prince mee. Bolle zijn vrouw, Bolle raakte bij de aanval ook gewond. Mensen, Amerikaanse aanklager, was de operatie onderdeel van internationale complot dat de grote deels vanuit Zuid-Florida werd voorbereid in de gefinancierd. De huurlingen Mareda, Otra en Mi Pagraike, Abuja, Amerika, met Bahia, Ego 28-jarige en Mi, Kisirina, met Seben Pagrise, Ego Poswal Larekake, Ontugkalera, Pleegkindke, Ego 28-jarige man. 20 september ke ook is een pakkale zingen 12-jarige pleegse schukke op een ook een ontug kalera op ik is pakkale kisipahin pankerise pakkaraige he amare janta to ye sab maand he jo aap luk ko hum aaj ke samachar me bataan diya hai aur sunne ke liye bahut bahut dhanyabad shukriya dosto yahan tak tha hamara aaj ka देश और विदेश का समाचार जो आपको हम सुनाए हैं।

बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश की बात में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निकंदीन हंड्रेड एंड फाइव निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

तेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना, उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये जौ है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहां पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

30% हो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नई खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर 1 फन एन सी फन नहीं खता।

चोली के पीछे क्या होता है? चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नो एंटी मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एंट्री सेंसेशन
1: एक निशान से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाता।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिससे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत बिड़कन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। और पहला दर्द भरा गीत सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई माइटी मुकेश के आवाज में।

चाहे जो तुझे दिल से मिलता है मुश्किल से, ऐसा जो कही है बस वही सबसे हसी है। उसके हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो न हो।

दूसरा डर भरा गीत फिल्म प्रेम नगर से मैं निकाला हूँ। उन दिनों का सुपरस्टार राजेश खन्ना और नाइटिंगेल हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, एस दे बर्मन के म्यूजिक पर हसीनों का पुजारी किशोर कुमार के आवाज़ में ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा।

अंधेरा गया, सूरज निकल आया। है बेवफा, तुमने प्यार मुझसे किया, तुमने प्यार मुझसे किया और शादी उससे कर डाला। हम बुरे हैं हम जानते हैं, मगर जब तुम बोलते हो तो मैं मानते नहीं।

महका करेंगे, सितारों का सफर आप सुनेंगे और मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ के बारे में कुछ बातचीत होगा। जैकी श्रॉफ खबर बॉम्बे में हुआ इन फ़रवरी 1975 तक। असली नाम जय किशन काकू भाई, पिता गुजराती थे और माँ उइखुर से एक उर्खुई से काजस्थान से आई थी। घर पर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए जैकी ने बहुत कम पढ़ाई किया। एक बार उन्हें ताज होटल में काम मिला, लेकिन डिग्री इसके पास नहीं था तो काम वहीं से रुक गया। एक व्यवसायी के सामने खड़ा था तो एक रेक्लामा ब्यूरो का आदमी उन्हें देखा और बातचीत किया, क्यों ना आप मेरे रेक्लामा ब्यूरो में काम के लिए चले आए थे हो। तो उन दिनों से वो मोदेल वर्ल्ड में कदम रखा और उसके बाद देवानंद ने जैकी श्रॉफ को ले गया बॉलीवुड का फिल्म वर्ल्ड में। पहला रोल उन्हें मिला एक हंटलांगर का, शक्ति कपूर का हंटलांगर था फिल्म स्वामी दादा में। उसके बाद फिल्म हीरो में होफ रोल जैकी श्रॉफ को मिला और ये फिल्म एक हिट निकला। तू मेरी जानू हो इस गीत में पेश करूंगा, उसके बाद जैकी का कहानी आगे जारी रहेगा। फिल्म हीरो का सॉन्ग।

जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ 13 भाषा में फिल्म बनाया। निहरी सीवन तक तक में शारी किया फिल्म प्रोड्यूसेंट आयशा दत्त के साथ। दो लड़कन है, बेटा का नाम है टाइगर श्रॉफ, दो भी इन दिनों में एक्टर है बॉलीवुड में। जैकी ने आयशा को 20 साल तक के सामने देखा और आयशा ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, 13 साल की उम्र था, फिर भी दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया। जैकी का रूप नाम दोस्तों, इन्हें लोग अभी जग्गू डाडा के नाम से पुकारते हैं। अभी गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा क्यों।

माइना का सॉन्ग अभी आपने सुना, जैकी श्रॉफ यूही चावला के साथ फिल्म में काम किया। सितारों का सफर आप सुन रहे हैं राजन के साथ। जैकी का नाम किस तरह से जग्गू डाडा निकला मैं आपसे बताता हूँ। जैकी श्रॉफ का एक बड़ा भाई था जिन्हें लोग जग्गू डाडा के नाम से पुकारते थे, इसलिए कि गाँव में जब कोई के प्रॉब्लम होते थे तो जाकर इनका बड़ा भाई जग्गू डाडा ने ये संभालते थे। तो एक बार एक छोटा सा लड़की पानी में गिर गया और पानी में डूब रहा था, उसी समय जग्गू ने देखा और तुरंत पानी में कूदा, ये लड़की को बचाया लेकिन खुद पानी में डूबकर मर गया। तो उसी दिनों के बाद गांव के लोग सभी फैसला किए, आज से आपका नाम जग्गू डाडा हम लोग रख देते। तो उसी रोज से जैकी श्रॉफ का नाम पड़ गया जग्गू डाडा। जैकी श्रॉफ को एक बार फिनांशियल प्रॉब्लम था दोस्तों, उसका मकान और गहना वगैरह वगैरह सब बेचा जाता, लेकिन प्रॉब्लम होता है जब तक किसी ने जब संभाल लेता है तो अच्छा होता है। एक गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा।

गुडारा या जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ का पैसे का प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, खर्च में ज़्यादा था और मकान में भी लगाया, तो ये एक हेल्थ की तरह ये हम लोग कहते हैं लाला लालक पास गए, वहाँ पर पैसा लिया लेकिन भरने के समय प्रॉब्लम हुआ। तो सलमान खान ने ये बात सुना कि उनका मकान ये सब बचाव वाला है, तो सलमान खान जाकर ये हेल्थ की तरह लाला से बातचीत किया और ये प्रॉब्लम हल्का हो गया। निहरी तुम तक से आज तक बॉलीवुड में काम कर रहा है, लगभग 250 फिल्मों में काम किया। जैकी श्रॉफ का फेवरेट एक्ट्रेस आशा परेख है और परिवार के साथ इन दिनों में बॉम्बे में रहता है।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वादा दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम।

डरभरा गीत का प्रोग्राम लगभग आधे घंटे तक रहेगा और पहला डरभरा सॉन्ग जो मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ आप सभी के लिए मैं पेश करूँगा आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।

अगर अगर कोई आपसे नफरत करे, अगर कोई आपसे नफरत करे तो उसे दो वजह हो सकते हैं। पहला, आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करता। पहला, आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करता, या आप में कुछ ऐसा है जो उसमें नहीं।

एक ही लोग मोहब्बत किया करते हैं। ब्रोकन हार्ट सॉन्ग दरभर गीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। एक खूबसूरत दिल हजारों खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनो जिसका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। क्या बात है।

आवाज भी सुंदर भर गीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इन दिनों में जो फिल्में बनते उसमें बहुत कम दर्द भर गीत आते हैं। बीते हुए दिनों में लगभग हर एक फिल्मों में दर्द भरा गीत आते थे और लोग को बहुत पसंद है। आज तक लोग ये दर्द भरा गीत बहुत पसंद करते हैं। दिल टूटा है या नहीं, फिर भी ये दर्द भरा गीत से बहुत संबंध रखता है। एक आखिरी सॉन्ग चलेगा दर्द भरा गीत का प्रोग्राम में, कोई हमदम न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, किशोर दा।

हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे कराना आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। न्यूज से ही फिर तक दृश्य फाइव टू ए फिर से ही फिर तार का नंबर है

मेरे सपने अब एक रंग है फिल्म गाइड का सॉन्ग अभी आप पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुन रहे थे। अब की बार दोस्तों ओ मेरे साहे खुबा जॉय मुखर्जी का फिल्म है लव इन टोक्यो, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे। और इस फिल्म में जॉय मुखर्जी, आप जानते जितने फिल्में थे जॉय मुखर्जी का सभी हिट थे। जॉय मुखर्जी बहुत से ज़्यादा फिल्म नहीं बना, लगभग 40 या 50 फिल्मों, और उनका शरीर जो है बड़ा हो गया, इसी कारण वो फिल्म में नहीं आया। लेकिन जितने फिल्में वो बनाया सभी एक से एक फिल्म सभी हिट थे। फिल्म लव इन टोक्यो का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

साहब की आवाज में भी आप ये गीत सुन रहे थे, गजरा लगा के गजरा सजा के जइयो ना, फिल्म अपना जिसका सॉन्ग है। आप जानते हैं, आप फिल्म जो देखे होंगे, रेश खन्ना मुमताज इस फिल्म में काम किया, किशोरदा लता गीत है दोस्तों। आप जानते हैं इस फिल्म में कन्हैया लाल, प्रेम चोपड़ा, ये लोग बहुत फिस्ती रोल, बहुत फिस्ती खेला, निखातिफ रोल, बहुत अच्छी अदा से ये लोग अच्छी तरीका से अदा किया। और आप जानते हैं जब लोग फिस्ती खेल होते हैं तो लोग अपन लड़का के नाम नहीं रखते हैं, कोई कन्हैया लाल नहीं रखते हैं, कोई प्रेम चोपड़ा नहीं रखते हैं, कोई प्राण नहीं रखते हैं, कोई कायन सिंह नहीं रखते हैं। या कायन सिंह के नाम मैंने लिया तो मुझे याद हो गया दोस्तों, फिल्म अपनामा स्टूडियो में होता रहा तो कायन सिंह घर पर जा रहा था तो एक दोस्त स्टूडियो में का एक दोस्त कायन सिंह से कहा, एक खत है रास्ते में मेरे बीबी को दे देना घर पर। तो कायन सिंह गया उस आदमी के घर पर, जब दरवाज़ा पे खटखटाया और आदमी का बीबी जो है जब दरवाज़ा खोला और कायन सिंह को देखा तो दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। तुरंत अपन आदमी को तार किया, कहा कि मेरे दरवाज़ा पर मेरे दरवाज़ा के सामने कायन सिंह खड़ा है। तो उसका पति ने कहा जी हाँ दरवाज़ा खोल लो, इसलिए कि मैं एक खत भेजा है उसी से। तो देखो क्या क्या नहीं होता, लोग कभी नहीं एक फिस्ती खेल का नाम अपन लड़का का देता है। और अभी जो कॉमेडियन एक्टर है उसका नाम अभी नहीं देता है, चार्ली कन्हैया लाल भी कभी कभी कॉमेडियन करता है। मुझे याद हो गया दोस्तों, जॉनी नंबर वन तो है हम लोग के वीडियो में जो है जॉनी नंबर वन, वो आदमी वो नाम लेके, उसका असली नाम नहीं है लेकिन वो नाम लेके चलता है, तो वो शर्म नहीं करता, लोग शर्म करते हैं नाम लेके चलने को, लेकिन ये खुलासा ये नाम लेके चलता है। और जैसे है जॉनी विस्की, महमूद, जॉनी वालकर, मोहन छोटी, लोग अपन लड़का के नाम नहीं रखते हैं। फिर भी खुशी की बात है कि फाहोन हिस्सा रेडियो का जॉनी नंबर वन हमेशा तैयार रहता है और अपन प्रोग्राम हमेशा अच्छी तरह से पेश करता है। कजरा लगा के जइयो ना।

जरा लगा के जइयो ना। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर का एक रोमांटिक फिल्म है और इस रोमांटिक फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग है दोस्तों। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का सॉन्ग है चलो सजना जहाँ तक घटा चले। शर्मिला सेक्स बॉम्ब, शर्मिला टैगोर एंड धर्मेंद्र दोनों का फिल्म।

तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वास्तव में दोस्तों, ये आँख जो है, जब प्यार होता है तो आँख से शुरुआत होता है और जाकर दिल में ख़त्म होता है। जी हाँ, मान लीजिए कि आपको किसी से प्यार है तो ये प्यार वैसे नहीं हो जाता है, ये आँख से शुरू होता है। आप देखते हैं उसको, वो आपको देखते हैं, पसंद होते हैं लोग आपन में, तो ये बात जाके दिल में फंस जाता है। और जब दिल में घुस जाता है तो कभी नहीं निकलता है। चाहे दिल टूट जाता है फिर भी उसका याद हमेशा रहता है, यकीन कीजिए।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है

आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बांट लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह, क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में। भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात कली तो वादा किया है एक बार फिर ख्वाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

इश्क प्यार का नखमा है, प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदर ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार की, अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब।

हरि ओम। सुनने वालों की सेवा में हमारा सादर सा नमस्कार और प्रणाम, साथ ही साथ आदाब। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णदत्त भगवान दीन, जो आप सभी के खिदमत में परिवार रघुनाथ जी का और शोक समाचार प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप लोग जरा गौर फरमाएं।

BTW 11 अप्रैल 2026 को हम सभी का प्यारा भाई श्री सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ है, जो जीवित में फ्रीडम बर्ग सुरीनाम में रहता था और नीदरलैंड में टिलबर्ग और ड्रुने का निवासी था। और als beroep was hij financieel adviseur bij de en ook gemeenteambtenaar bij Ta. Op 23 september, dus vandaag, zou hij 65 jaar geworden zijn, die hij samen met zijn familie al gepland had om het heel groots te vieren. Maar helaas had God andere plannen. तो भाई सेना जी के याद में ये शोक समाचार पेश कर रहा हूं, आप जरूर सुनने के लिए ध्यान दें और मेहती कृपा करें।

0: इस खबर को मैं दोहरा रहा हूं। बीते हुए 11 अप्रैल 2026 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर जीवित होता तो आज 23 सितंबर 2026 को 65 यार का होता। अपने जीवित में सेना जी सूरीनाम फ्रीडम ब्यूरख और नीदरलैंड टिलबर्ग और द्रुना का निवासी था। Als beroep gemeenteambtenaar en financieel adviseur का काम भी करता था। Zijn hobby's waren naar muziek luisteren, Bollywood films kijken en veel reizen, waarvan het eiland Mauritius zijn favoriet was. आज अगर वो जीवित होता तो 65 साल का होता और प्लान किया था बड़े धूमधाम के साथ अपने 65वां सालगिरह परिवार हिति प्रेमियों और कॉलेज खास के साथ मनाने को, लेकिन हिलास भगवान का मर्जी कुछ और था। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, इनसे शोक समाचार पहला समाचार का शुरुआत मैं करने वाला हूं। मेरी कृपा है कि आप जरा गौर फरमाएं। टिलबर्ग और द्रुना शहर से जीवन साथी मुफ्राउ सिन मनोहर जी अब नी प्यारा सा जीवन साथी श्रीमान सेना जी के याद में और उनका आत्मा के शांति के लिए ये प्यार और यादें से भरी गीत को मांग रखी है।
1: सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं।
2: सवाल एक ही है सरिता, बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा।
1: भूल क्यों नहीं जाते इस सवाल को?
2: कैसे भूल जाऊं, मैं ही तो हूं ये सवाल। अपने आप को कोई भूल सकता है?
1: क्यों नहीं।
2: कैसे?
1: किसी के होकर और किसी में खोकर।

हर जन्म में हमारा मिलन। बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ है। अगर वो जीवित होता आज तो 65 साल का होता। तिलबुर्ग और दृढ़ शहर से जीवन साथी मुफरौ सिंह मनोहर अपनी प्यारा सा जीवन साथी श्रीमान सेना जी के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये प्यार और यादें से भरी मोहब्बत और ढेर सारे यादें के साथ ये अति सुंदर गीत को मांग रखी थी। दूसरा समाचार की तरफ बढ़ते हैं।

0: बीते हुए 11 अप्रैल 2026 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर आज जीवित होता तो 23 सितंबर 2020 को 65 साल का होता। तो भाई सेना रघुनाथ जी के याद में तिल बिरह और दृढ़ शहर से जीवन साथी मुफ्राओ सिंह मनोहर अपनी प्यारा सा जीवन साथी श्रीमान सेना जी के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये अति सुंदर बयान पेश कर रहे थे। तीसरा समाचार की तरफ बढ़ते हैं। बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर जीवित होता तो आज 23 सितंबर 2020 को 65 साल का होता। भाई सेना जी के याद में तिल बिरह और दृढ़ शहर से जीवन साथी मुफ्राओ सिंह मनोहर अपनी प्यारा सा जीवन साथी श्रीमान सेना जी के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये प्यार और याद से भरी गीत को मांग रही है। और साथ ही साथ डेन बॉश और देखा जाए दृन से दो बेटे आकाश और अजय, तिल बिरह से शहर से बेटा संजय और बेटी अर्निका, दामाद हरुण और नातिस मेसन और एडन, और साथ ही साथ होंच गुची अपने जीवन साथी प्यारा सा पापा और ससुर जी एनाटुल बाश्य के याद में ये अति सुंदर सा नगमा सेना जी के याद में और उन्हीं के आत्मा के शांति के लिए ये सुंदर सा नगमा को फरमाइश किया है। तो मिल के सुनते हैं ये अति सुंदर सा बयान, एवरग्रीन सॉन्ग जब जब बहार आए।
1: जब

बीते हुए 11 अप्रैल 2026 को श्री मान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर जीवित होता तो आज 23 सितंबर 2020 को फेफड़े में सिस्टिक आर का होता। तो श्रीमान सेना जी के याद में तिलबिरख और द्रीने शहर से जीवन साथी मफ्रो सिंह मनोहर अपनी प्यारा सा जीवन साथी श्रीमान सेना जी के याद में और उनका आत्मा के शांति के लिए ये अति सुंदर प्यार से भरी हुई बयान और साथ ही साथ देखा जाए देन बोश और द्रीने शहर से दो बेटे आकाश और अजय, तिलबिर शहर से बेटा संजय, बेटी अर्निका, दामाद हरुण और नाती मेसन और एडन, साथ ही साथ हंच गुची के तरफ से अपने जीवन साथी पापा ससुर और बाश्य के आत्मा के शांति के लिए और उनके याद में ये अति सुंदर सा बयान पेश कर रहे थे।

0: मैं।
1: चौथा समाचार की तरफ बढ़ते हैं। बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान शयना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था। जो अगर आज जीवित होता तो 23 सितंबर 2020 को फेफ इंसेस्टियर का होता। सूरीनाम से परिवार रघुनाथ, दो भाई, एक बहन, दो भौजी और नीदरलैंड से अल्फन अंदरेन से एक भाई, एक भौजी और एक बहन और एक बहनोई। साथ ही साथ अम्स्टरडम से एक बहन और दो तीन भौजी जो हॉलैंडेस में रहते हैं, उन्हीं लोगों के तरफ से सेना रघुनाथ जी के याद में और उनका आत्मा के शांति के लिए ये अति सुंदर सा नगमा को फरमाइश किए हैं, जो मैं अभी लगाता हूँ। थोड़ा लग जाता है क्योंकि बहुत ही तार द्वारा काम करना पड़ता है ना, तो रिक्लाम भी आ जाता है।

0: एक तो मैंने लिख ली है, वो बंबई से डालूंगा, फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से, फिर मार्शल से, और फिर लंदन पहुंचकर।
1: मुझे भूल तो नहीं जा।
0: ऐसी बातें कर रही हो तुम। मनीष ने जिंदगी में सिर्फ दिव्यानी को चाहा है, और कोई लड़की कभी उसके जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं दिव्यानी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दिव्यानी एक बार फिर तो कहो, रहे न रहे हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली, बन के सबा, आ गए वफा में।

0: मैंने सोचा था हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है।
1: तुमने ठीक ही समझा था उसकी चिट्ठी से, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सका।
0: मैं माँ हूँ ना, सुपर्णा के दिल की बात मैं ही समझ सकती हूँ।
1: हाँ।
0: मनीष, एक बार मुझे दिखा दो उस लड़के को।
1: सच? मैं यही चाहता था तुझे जानने।

बीते हुए 11 अप्रैल 2026 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर आज जीवित होता तो 65 साल का होता। सुरिनाम से परिवार रघुनाथ, दो भाई एक बहन, दुई भौजी, नीदरलैंड से एक भाई अल्फनंदर रेन, एक बहन एक भौजी एक बहनोई और एक बहन अम्स्टर्डम, तीन भौजी जो नीदरलैंड से भी और साथ ही साथ स्वर्गीय माता पिता धानपति और गंगा प्रसाद रघुनाथ, अपने बेटा और भाई और देवर के याद में उनके आत्मा के शांति के लिए ये अति सुंदर सा बयान को मांग रही थी।

आज भी समाचार के तरफ बढ़ते हैं। बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर आज जीवित होता तो आज 23 सितंबर को 5th का होता। तो श्रीमान सेना जी के याद में सूरीनाम से परिवार मनोहर, दो बड़की के तरफ से छोटकू के लिए, दो सारी के तरफ से बहनोई और दो सार के तरफ से बहनोई, साथ ही साथ अमेरिका से सारी और साड़ू भाई की तरफ से, और देखा जाए तो साथ ही साथ नीदरलैंड फैमिली में जो एक मनोहर डेल्फ सेल में भी रहता है एक सार, और नई मीख में एक बड़की फॉर सेंट लीफर छोटकू एंड बहनोई, और साथ ही साथ जिगरी दोस्त भाई रूजी भी अपने प्यारा दोस्त भाई सेना रघुनाथ जी के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये अति सुंदर बयान को मांग रखे हैं, जो मैं तुरंत कोशिश करता हूँ लगाने के लिए। Maar het gaat een beetje stroef, omdat ik veel met de telefoon moet werken. Veel nummers heb ik niet echt op YouTube kunnen krijgen. En hiervoor mijn excuses. Ja, kam, hoort hij, ja, blok, tot jantene.

बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ है, जो अगर जीवित होता आज 23 सितंबर को 65 साल का होता, तो श्रीमान सेना जी के याद में और उनके आत्मा के शांति के लिए सूरीनाम से परिवार मनोहर दो बड़की के तरफ से छोटकू के लिए, दो सारी के तरफ से बहनोई, दो सार के तरफ से बहनोई और साथ ही साथ अमेरिका से सारी और साढ़ू भाई के तरफ से, साथ ही साथ नीदरलैंड ने फैमिली मनोहर जो डेल्फ सेल से है एक सार और नई मीख से एक बड़की अपने लीफ लीफ छोटकू के लिए और नतीलक जिगड़ी दोस्त भाई रिधि अपने प्यारे दोस्त भाई सेना रघुनाथ जी के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये अति सुंदर सा बयान को आप सुन रहे थे।

छठ वी समाचार के तरफ सुनने के लिए ध्यान दे और मेहती कृपा करें। बीते हुए 11

फाउन हिंदुस्तानी देन हाँ शहर से सभी डायरेक्टर्स, सभी मीडिया वर्कर्स, सभी उमरूपर्स के तरफ से भाई सेना के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये अति सुंदर गीत हम लोग चलाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही हसमुख इंसान था हम लोग का ये जुगनी दोस्त एंड ओक नाम अलग फाहन दी नीत मेयर बाय ऑन सेन एंड दी ओक एन हेल गुए बंद में भाई सेना हर हे वॉज ओक इन फन ओंस ट्रोस्ट लुस्तरार फन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। कहा जाता है कितने बार वो कहा हम लोगों से कि उनके घर पे तो 24 घंटा फाहन हिंदुस्तानी रेडियो ऑन रहता है और उन्हीं के याद में ये अति सुंदर बयान हम लोग सेलेक्ट किया है। यादें तो हमेशा रह जाते हैं और बहुत ही दिलदार आदमी था। है हिल्ट ओक हेफिल फन लाइव शोज द लास्ट 3 शोज फन मई वट इक हैड गेगेवन मेट बीरबल्स ऑर्केस्ट्रा एंड स्ट्रिंजर्स ऑर्केस्ट्रा वट है वॉज है दरबै मेट सन फ्रॉ एंड नॉक एन पार फैमिलीलीड इक बेन नॉक देख नॉक एन ब्रूर आउट ऑल्फन ऑन द रेन दी ओक एन हेल ट्रॉ लुस्तरार इज फन ओंस फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो भाई सेना जी के याद में ये अति सुंदर पसंद नंबर है वो फॉर हेम खकोशन की तू कहीं आस पास है दोस्त और सदा ही रहेगा।

बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ था, जो अगर आज जीवित होता तो 65 साल का होता। तो भाई सेना जी के याद में और उनके आत्मा के शांति के लिए धनहाष्य से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्सी लीडर मीडिया वर्कर्स उम रूपर्स और सभी साथियों जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, सभी के तरफ से भाई सेना के याद में और उनका आत्मा की शांति के लिए ये अति सुंदर बयान हम पेश कर रहे थे।

तो एक आखिरी समाचार आप सुनेंगे हमारे परिवार रघुनाथ और मनोहर जी के। और वो मैं पेश करने वाला हूं खास करके भाई सेना रघुनाथ जी के याद में, सभी साथियों, सभी दोस्तों की तरफ से, सभी कोलीग्स की तरफ से। एन ik heb een feedback net gekregen dat ik een zus uit Leiderdorp was vergeten. Bij deze, ja, kaam hota hai, wahan to chota mota galtiya to ho jata hai na. Maar to jo behen bhi Leiderdorp mein rehti hai, apne bhai ke atma ke shanti ke liye unke yaad mein hum jo nagme chalaye the, और ये नगमा सभी कोलीग खास, सभी साथियों के तरफ से, और ये भी उनका एक मन पसंदीदा गाना था, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, उपनामस हेम नतुलक फॉर ऑल सेम फ्रेंड्स।

बीते हुए 11 अप्रैल 2020 को श्रीमान सेना रघुनाथ जी का मृत्यु हुआ है, जो अगर आज जीवित होता तो 65 साल का होता। उसी के याद में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी मीड वर्कर्स और सेना जी के सभी कोलीग, खास सभी दोस्तों की तरफ से ये अति सुंदर बयान उनके याद में और उनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग पेश किए थे। तो यही तक था आज का हमारा ये शोक समाचार जो समाप्त होने को आया। समाचार देने के और सुनने के लिए फूल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और समाचार प्रस्तुत करने में अगर मुझसे कोई भूल या टूटिया हो गया हो तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं।

स्थानीय रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्ट्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। हम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। आना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स अंत बदंगते लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, तो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डाउन सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी पहले Van maandag tot vrijdag van 9 uur is morgens tot 5 uur middags op de volgende telefoonnummers kantoor 070-365-2247 of Studio Katarka nummer 070-362-2077. Toen je op de radio kwam, denk aan Fahon Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. राम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप है तो हम लोग है ना। बेंट यू नो खेल फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Recent hebben we ook nog onze eigen karaoke team, dus blijf ons volgen via social media en ook via onze programma's. De Abhyakar is chota aur mota sa jo Fahon Hindustani Radio ka parivar hai na, usme Abhyakar shamil ho jaye. सभी जानकारी 07-365-2047 पर आधार करें एंड फ्रांक द मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे टॉट फिल्म मैं तेरे लिए, जो रिलीज किया गया था 1988, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मीनाक्षी शेषरारा जी के साथ, और नूतन जी भी इसका फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार बप्पी लहरी के साथ है और सभी गाने लिखा है देवानंद का छोटा भाई श्री विजय आनंद जी ने। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने के उस फिल्म में से, तो हम एक अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं के नाम पे। जाने से लगते हो मैं तेरे लिए बप्पी लहरी के साज पर और उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग देखा जाए तो बप्पी लहरी के साथ पर उन्हीं के आवाज में साथियों के साथ इंटरव्यू फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 वादा निभा दो मैं तेरे लिए। अगला बयान सुनन को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए, अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में और साज है बप्पी लहरी जी का।

दिलों को मिला रो और वादा भी निभा रो। इन फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 अति सुंदर बयान अमित कुमार और साथियों के आवाज में। अगला बयान आवाज दे तू कहाँ है मैं तो तेरे लिए, टाइटल सॉन्ग और एक बार फिर किशोर दा का सुपुत्र अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में, बप्पी लहरी के साज और विजय आनंद जी के अल्फाज़।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग एक फिल्म मैं तेरे लिए 1988 अमित कुमार और साथियों के आवाजों में 30 मिनट बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज बाय बापी लहरी और अल्फाज़े था देवानंद जी का छोटा भाई विजय आनंद जी का। अगला बयान, मन के मंदिर में जलती रहे एक दिल को छू लेने वाला नगमा है, एड फिल्म में तेरे लिए गजल स्टाइल है। कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार दिग्गज बाप्पी लहरी और अल्फाजे है, क्या अल्फाजे है विजय आनंद जी का। गायक है महान गायक एड यार 80-90 श्री अनूप गोशाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप सुनिए।

क्या बात है, रोटे खड़ा हो जाते हैं ऐसे ऐसे नगमे सुन सुनकर। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार गायक प्रोड्यूसर द ग्रेट बप्पी लहरी जी, और गाने वाला था महान गायक एक दे यार तख्त नीखंत श्री अनूप घोषाल जी। तो साथियों, सभी नगमे फिल्म मैंने तेरे लिए का निधि आखन तख्त मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था इन निधन तख्त में, और इस फिल्म में देवानंद साहब जी ने काम किया था। महान अभिनेता भैया भरत द ग्रेट मनोज कुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न श्री रेखा जी के साथ, और महान अभिनेता शशि कपूर जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार है उत्तम जगदीश जी, और गाने वाले तो एक से एक आप सुनते रहेंगे। और पहला नगमा उस फिल्म में से लेकर आ रहे हैं आप सभी के सेवा में पद्मश्री महेंद्र कपूर जी और उत्तम जगदीश जी, क्या संगीत दिया है इस फिल्म में। मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर टाइटल सॉन्ग, मैं एक क्लर्क हूँ।

कुछ छू लेने वाला नगमा, कुछ आंसू भी निकल आते हैं इसी से नगमे सुन सुन के ना। फ्रॉम द मूवी मैं एक क्लर्क हूँ, मनोज कुमार पे फिल्माया गया है अति सुंदर बयान, महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीतकार उत्तम जगदीश के साथ, फिल्म क्लर्क टाइटल सॉन्ग।

तो साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि वो किसको और चाहने की सोच भी ना सके।

0: किसी और को चाहने की सोच भी ना सके। हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम, हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम जब उसकी थोड़ी सी मोहब्बत याद आती है। और सितम का मतलब है अंडरड्रकिंग, दिस सताना। अगला शेर जो लिखा है यारो, चलेंगे तेरे साथ तेरा साया बनकर, छोड़ ना देना बीच राह पराया समझकर। ये सब दो लाइन शेर शायरी है, यही तो खूबी है ना, इतनी कम शब्दों में लोग कुछ ना कुछ बता देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचो, सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचूं, मगर टूट जाते हैं ख्यालात तेरी याद के बाद। किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, हमें तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा तू मेरी सांसों में, दिल में, ख्यालों में, धड़कन में, रूह में, नस नस में, ये मैंने कहा, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं यारो। शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, शिकायतें वहां होती है जहां ऐतबार ना हो, मेरा तो यकीन ही तुम हो तो शिकायत कैसी। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक और ही सुंदर बयान, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी। रख गीता पे हाथ क्या बात है, महान म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना ने मिलके इस सुंदर बयान को सजाया है।
1: और बेल आइकन को प्रेस करें

तापे हाथ क्या बात है, अति सुंदर बयान एड फिल्म क्लर्क 1989 क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना। हमारे साथियों अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। एनाथोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स बदंत एंड सोशो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज्ड फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग 24 घंटे रोजाना लगातार कार्यक्रम को सुन सकते हो वर्ल्ड वाइड। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, कॉमर्शियल्स, डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मार्ग पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हर देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टेनिस कंटोर यूरो फन मंडाग टू फ्राइडेग फन 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags। कंटोर का टेलीफोन नंबर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर 07-362-2077। तो जो भी रेडियो का काम हो डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, ढंढोरा भी पीटते रहना, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए। और इसके लिए नतीजक हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो वक्त हो चुका है यार कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। तो आपके लिए हम लोग आपका मन पसंद नगमाएं चलाएंगे। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करो अपने तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ हमारे प्रिय श्रोताओं। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आरजू तक जो रिलीज किया गया था 1965। कुछ नगमे सुना चुका था मैं आप सभी को, कुछ सुनाने को रह गया है। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न श्री साधना जी के साथ और महान अभिनेता ग्रेट एक्टर फिरोज खान भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार है शंकर जय किशन। तो एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनेंगे, सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। अजी हमसे बचकर कहां जाएगा,
1: अजी हमसे बचकर।

0: मुझे क्या मजाक है, क्यों सता रही हो?
1: हम सता रहे हैं तुम्हें, खुद ही तो इश्क फरमा रही हो।
0: इश्क? किस इश्क?
1: अरे मैं सब जानती हूँ, जिन रमेश को तुमने फंसाया है ना, वो तो मेरे भैया है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ
0: रमेश, ओ सरला प्लीज, ये सब झूठ है, झूठ है।
2: ब्यूटीफुल सॉन्ग है कुछ डायलॉग के साथ, आई द फिल्म आरजू नेहदी फैन सिस्टर, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने क्या संगीत दिया इस फिल्म में। अभी तो आप सुने क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक कैसे मिलाया था ये दोनों संगीत का, इसका ये तो बहुत ही बड़ा खूबी था ये दो महान संगीतकारों का। आयशा भोसले और मुबारक बेगम साथियों के साथ सुनाया आप सभी को। तो हमारे प्रिय साथियों सभी नगमे फ्रॉम द मूवी आरज़ू 1965 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था इन 1966 और इतना काम कमाया इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड, फिल्म सूरज। सभी नगमे इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए। तो फिल्म सूरज में से जो नगमे मैंने सेलेक्ट किया हूँ अब अभी आप सुनेंगे। और फिल्म सूरज में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलका हुसन द ग्रेट क्लासिकल डांसरस वी जयंती माला जी के साथ, मलका हुसन ब्यूटी क्वीन मुमताज जी इस फिल्म में भी काम किए हैं, एक बार फिर शंकर जय किशन के साथ और हसरत जयपुरी के अल्फाजे। उस जमाने में भी लोग जानते थे ना कि नेवर चेंज द विनिंग टीम, और ढेर सारे फिल्मों में शंकर जय किशन ने अपना संगीत दिया है राजेंद्र कुमार जी के फिल्मों में। और खास करके लोगों का भी कहना है और ये भी साबित हुआ है कि सबसे सुंदर सुंदर और दिल को छू लेने वाला नगमे पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी जी जो गाए हैं वो सिर्फ राजेंद्र कुमार जी के फिल्मों में, लोगों का कहना है। खास करके हम लोगों का मिस्टर गूगल भैया यूसुफ जी का भी यही कहना है। तो अब फिल्म सूरज में से आप नगमे सुनेंगे नेहदी सेशन सिस्टर, एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनने वाले हैं। जरा दिल थाम के बैठिए, क्या हलचल मचा दिया था ये नगमा जब रिलीज किया गया है नेहदी सेशन सिस्टर में वर्ल्ड वाइड। बहारों फूल बरसाओ, मेरे ख्याल से जितना बैंड था उस जमाने में भारत से लेकर वर्ल्ड में, सभी ये गाने अपने रेपर्टुआर में लिख लेते थे और शादियों में खास करके पहला गाना लोग पसंद करते थे इसे सुनने के लिए। तो मिलके सुनते हैं लेजेंडरी सॉन्ग बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, क्या बात है, मिलकर सुनते हैं रवि साहब जी ऑप्शन बेस्ट।

जबरदस्त लेजेंडरी सॉन्ग आप श्रोताओं के सामने मैंने पेश किया, एड फिल्म सूरज 1966, सुर का बादशाह रफी साहब जी के आवाज में, शंकर जय किशन के साथ और अल्फाज़े था हजरत जयपुरी जी का। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप टून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और नगमे चल रहे हैं फिल्म सूरज का। इतना है तुमसे प्यार मुझे, सभी नगमे क्या बात है, सुपरहिट फ्रॉम द मूवी सूरज 1966 का सुपरहिट मूवी। मिलके सुनते हैं रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में।

मुझे मेरे राजदार एक फिल्म सूरज 1966 महान आवाजों के मालकिन और मालिक रवि साहब और लता जी का ये ब्यूटीफुल डुएट आप सुने। मेरे ख्याल से देखा जाए सुमन कल्याणपुर होना चाहिए। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों कुछ शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ शेर्स दोस्तों के बारे में यारो कि शिकवा मत करना, शिकवा मत करना, फिर के हमने एक आखिरी बार भी पूछा नहीं। आज पूछती है, आज फिर पूछती है, क्या तुम्हें आज भी हमसे प्यार है? आवाज का इंतजार करता हूं। खुदा ने लिखा ही नहीं तुझको मेरी किस्मत में शायद, खुदा ने लिखा ही नहीं तुझको मेरी किस्मत में शायद, वरना खोया तो बहुत कुछ, वरना खोया तो बहुत कुछ था तुझे पाने के लिए। मैंने उससे कहा कि छोड़ दो या तोड़ दो मुझे, मैंने उससे कहा कि छोड़ दो या तोड़ दो मुझे, उसने हंस के गले से लगाया और कहा छोड़ रहे हैं आज तुझे, टूट तुम खुद ही जाओगे। एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, दोनों काफी है सुकून बर्बाद करने को। तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे यारो, अपना तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। तुम प्यार कर लो, तुम प्यार कर लो, हम उस पे अपने आंखों से हुकूमत कराएंगे। ये भी होता है यारो, अपना हम अपना स्टेटस दिलों पर अपडेट करते हैं फेसबुक पर नहीं यारो, हम अपना स्टेटस दिलों पर अपडेट करते हैं फेसबुक पर नहीं, क्योंकि हमारे एटीट्यूड को समझने के लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए। यारो ये था कुछ शेर समर शेर की चाहने वालों के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक आवाज जो आप सुना उस जमाने में और ये आवाज आते हुए हलचल मचा दी थी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, द ग्रेट शारदा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे तितली उड़ी जो चली क्या बात है। शैलेंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय शंकर जयकिशन फ्रॉम द मूवी सूरज 1966।

ब्यूटीफुल सॉन्ग टिटली उड़ी उड़ जो चली उस जमाने के नया आवाज ने 1976 तक में रिलीज किया गया था। ये नया आवाज शारदा जी का इन द फिल्म सूरज 1976 तक और वर्ल्ड वाइड हलचल मचा दी थी। शंकर जय किशन की साज शैलेंद्र की अल्फाजी। अगला बयान जरा दिल थाम लीजिए, एक जबरदस्त लेजेंडरी सॉन्ग है एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सूरज। क्या बात है, मिल के सुनते हैं चेहरे पे गेरी जुल्फे रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में।

बयान एड फिल्म सूरज नेगदीन सेशन सिस्टर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन। एक अति सुंदर क्लासिकल सॉन्ग आप सुनेंगे और जरूर इस फिल्म को कभी आप देखना। फिल्म सूरज, क्या नाचती थी वो महान हीरोइन विजयंती माला जी। इन दिस फिल्म वाज से मिस्किन ऑफ हर बेस्ट एक परफॉर्मेंस वो दी इस फिल्म में जो आप सभी को देखना चाहिए। हु खुद से वाज आल्सो एन एक्ट्रेस एंड टेफन्स क्लासिक डांसरेस, और सभी स्टाइल के डांस तो करती थी और ढेर फिल्मों में काम की, लेकिन सूरज में जो वो अपना कला दिखाई तारीफ़े काबिल लेजेंडरीस। मिलके सुनते हैं कैसे समझाऊं बड़े ना समझो, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन और रफी साहब और आशा भोसले जी साथियों के साथ ऑफ हन बेस्ट।

क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग क्लासिकल एकदम आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। एक फिल्म सूरज 1966, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी के आवाजों में कंपोज बाय जबरदस्त संगीतकार जोरी द ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जय किशन। देखो मेरा दिल मचल गया, एक बार फिर उस जमाने का मशहूर गाने वाली शारदा जी शंकर जय किशन की सांच पर फ्रॉम द मूवी सूरज 1966।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत सो सो लोबी लोबी नंगा ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, इश्तिहारे हो, जरूरी खबरें या कॉमर्शियल्स आप बनवाना चाहते हैं, किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारों कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारों। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेलेटाइडेंस कंटोर यूर फन मांडक तोत फ्रेडक फन नीख यूर स्मार्फंस तोत फेफ यूर स्मिडक्स दफ्तर कतार का नंबर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। इसी तरह जरूर ढंढोड़ा पीते रहना यारो हम लोगों के बारे में। बेंतिनों के लिए फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 07-365-2247 पर आप तार करें। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो। बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक, जो रिलीज किया गया था 1964। ब्यूटी क्वीन विजयंती माला जी के साथ राज कपूर जी ने, यानी हाँ राज कपूर जी और राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म में भी काम किए हैं, तो मिलकर काम किए हैं इस फिल्म में। संगीतकार है शंकर जय किशन। तो दो नगमे रह गया था सुनाने का इस फिल्म से, तो तुरंत मिलके सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे मज़ेदार सॉन्ग जो लोगों को उस ज़माने में काफ़ी पसंद लगते थे, कुछ को नहीं कुछ को ज़्यादा। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये गाया हुआ अति सुंदर बयान। मिलके सुनते हैं फ्रॉम द मूवी संगम।
1: मैं बुढ़ा

liebe die, I love you. From the movie Sangam 1964, Vivian Loboke, Beautiful Awazmi, composed by Shankar Jai Kishan. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं सभी नगमे फ्रॉम द मूवी संगम आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1964 में, फिल्म जिंदगी। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है एक बार फिर मलकाय हुस्न विजयंती माला जी के साथ, और महान अभिनेता द ग्रेट राजकुमार जी, महमूद हेलन और जीवन भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार एक बार फिर शंकर जय किशन। तो फिल्म जिंदगी में से अब आप नगमे सुनेंगे। अगला बयान शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं आप सभी को पहले मिली थी सपनों में। हसरत जय पूरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान रवि साहब जी के मधुर आवाज में, संगीतकार शंकर जय किशन के साथ पर।

दिल को छू लेने वाला नगमा हमने जफाना सीखी। एंड फिल्म जिंदगी नीति फिल्म सस्ते सुर का बादशाह रफी साहब जी। तुम्हारे ये साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स यारो कि जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, जाने वो क्या सोच रही थी अपने दिल में सारी रात, प्यार की बातें करते करते उसके नैन भर आए थे। मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, मत सोना किसी के कंधे पर सर रख कर ऐ दोस्त, क्योंकि जब वो बिछड़ता है तो फिर तकिए पर भी नींद नहीं आती यारो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी यादें और तस्वीर ही है, तुमसे अच्छी तो तुम्हारे यादें और तस्वीर ही है, जिनको जब दिल चाहे जिनको जब दिल चाहे बुला लूं और जब दिल करे गले से भी लगा लूं। माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हम हैं, माना जमाना ये देता है ताना कि थोड़ा आवारा हूं मैं, लेकिन जब हम जैसा हूं अब तो तुम्हारा हूं मैं और सदा ही रहेगा।

सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक झलक चाहिए तुम्हारा पीछा करने के लिए। मुझे आदत नहीं कहीं इतनी देर रुकने पर, मुझे आदत नहीं इतनी देर कहीं रुकने पर, तेरे दर्शन होते हो मेरे पांव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, तेरे दर्शन होते ही मेरे पांव मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। ये भी होती है। तो ये था कुछ शेर्स। आगे के प्रोग्राम में कुछ कोशिश करूंगा और सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द मूवी जिंदगी, इस बार एक डुएट तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ अल्फाजे सिर्फ आप रफी साहब जी के मधुर आवाज में सुनेंगे और बाकी गाने तो लता जी सुनेंगी आप सभी को कोरस के साथ शंकर जय के साज पर। मिलके सुनते

दिल की कमल देंगे, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जिंदगी, लता जी और साथियों के साथ। कवर अति सुंदर बयान, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में आप सुनेंगे। और एक बार फिर सुरों का बादशाह रफी साहब और आशा भोसले जी मिलकर सुनाते हैं घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शंकर जयकिशन और लिखा है हसरत जयपुरी।

Beautiful song, wonderful song, Ghungarwa Mora Cham Cham Baje. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. प्यार की दुल्हन सदा सुहागन. एक बार फिर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाली है आप सभी के लिए. मिल के सुनते हैं शंकर जय किशन के साज पर ये अति सुंदर बयान की प्यार की दुल्हन सदा सुहागन.

में पद्म भूषण मन्ना दा इस बार प्रोग्राम में एड फिल्म जिंदगी और वो सुनाते हैं आप सभी को मुस्कुरा ला दिले मुस्कुरा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मन्ना दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म जिंदगी शंकर जय किशन की सांच पर। छूने ना दूंगी मैं, दोनों बहने क्या बात है, लता जी और आशा भोसले जी टुगेदर मिलके सुनाते हैं छूने ना दूंगी मैं शंकर जय किशन की सांच पर। जिंदगी The movies.

0: वीणा देवी। शादी मुबारक, तुम हमेशा खुश रहो।
1: गोपाल, आपने हमेशा मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। मेरे जीवन में ये खुशी सदा बनी रहे, उसके लिए अब मुझे आपकी मदद चाहिए।
0: मदद मेरी? बोलो बिना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
1: भगवान के लिए आज के बाद आप मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कभी कोशिश न करें और उसकी वजह मत पूछिए।
2: गोपाल साहब
0: जी,
2: बस उधर ही देखते रहोगे?
0: हाँ हाँ,
2: देखते रहो, खूब देखते रहो, लेकिन कुछ ख्याल हमारा भी रखना।

ब्यूटीफुल सॉन्ग छूने न दूंगी मैं। आशा और लता जी दोनों बहनें ने मिलकर ये अति सुंदर बयान को आप श्रोताओं के सामने पेश की। एड फिल्म जिंदगी शंकर जयकिशन की सांच पर एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म जिंदगी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एक नए मेहमान विद कोर्स के साथ।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फाहून हिंदुस्तानी।

जो लोग चून की ए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश, द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ। आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ, लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। ये शानदार गीत चला हमने पेश की रवि साहब आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार, एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाई ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाए शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में यशुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी, येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखो जी, हाँ भी थोड़ी समय बाकी है तो हम पेश करते हैं ये गीत ही बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा। एवरग्रीन किशोर कुमार।

तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं, लता जी है।

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज में हम पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज में फिल्म आदमी में से निकालकर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं। ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ लता जी, ओम मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सूर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाए। द्रुमर तो पीट पाट कर द्रुम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म विक्टोरिया तुनोद्री में से निकाल कर हमने पेश किया है ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आर डी बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुई जी मित 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी, जी पी सिप्पी, ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का, सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं, फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निगेटिव फिर सस्तक का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना, सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर सस्तक का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तुहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि थी, फिर से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए, चांद की चांदनी गुलामों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म कहा या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वाले श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। www.pinfound.fm.nl पर आप चून है, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो, रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश द हार्ट।

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

लता जी, क्या आवाज में ये शानदार गीत आपको सुनाएं ऊपर फावनी रस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सही पिरात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ऊपर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की नेगेटिव सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साथ पर, ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल। ये शानदार गीत हमने पेश की, लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओवर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर नीख दें एने सही फिल्म तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।